0: 另外，就提到南端那阵的那一呢，我们就那个巨石开的车子那有哪
1: 了？嗯，等下等下，等你老外过来，你到底是学个什么专业？
0: 来是来是，当那做地摊生意的那来，每每在出去早起为电脑开机前不谈到那些，开始到没健康的麦地位呢，才得有在团圆美满就是也是完了。那另外一呢，地摊的那来，俺出每次的样二百多，去年去过别，每边做订单节日送给。那订单上在提领给地摊南端那阵人给巨石做的老外那些过给运到现在订单上在，谈到我们那里啊。跟着修队啊的呢，老阿三啊的，第一个跨团谈谈能行，第一个女不的，跟着一面，顶着几岁这些军人拿修烟了。
1: 那是，打俺这个没六百年的，你听俺那住的，那老呢，俺老阿三的，我带你这位的，你看见给他，对那个那老的，你看见给他是的，是打看是的呢，对是打不的，是。那第二看的是呢，俺这本地就是那老开的松园的，是呢。本地就是个邻居这边那路呢，他人的家伙点了修不着死，路忙啊，难给弄不着死，路碰啊，这边塞等着，塞不，送药的是，这送对面的这边的客人是呢，俺的路的当然就没路边难给，俺的这个那个是兄弟，等这边的家伙他你弄不，家伙他塞。对不起，累死。老话给你个人都忙啊，当你碰啊，爹爹就你来穿都要累死，他看卡起兄弟。爹呀，俺就老说到的卡里头是呢，爹一别的呢，老话说不包邮着完了，车子给车东都不认识，那个人都在地卡里是要的是呢，他端个他心里的怎么接不接的，他说嘛要了，说嘛的搞不懂吧。我在等这个，他吃不这个出入入社会难行的，你。地铁主要的是地地单地拿了，你车子车子牌子，你车子也车子都不晓得是地。上班时的卡牌，过过了是那个样子，你路有七种车有二百多辆，我第一地铁找不着去，送来的是的。但错完我就拿了，你同样的在找不着你，天天个点呢，你找不着不了些事。龙东站我忙工个，这送药站特别等天天个就等到城里头是排起前排个，俺个就你得从杭山过来些事，对你俺就特别去做不的。别没事别提了些事，但俺就马上呢，也对俺就马上那里些事上面。今天俺就个老领导手里打老公吧，但那真得老话的打差不多，对对，俺年纪。也有的那边的，你我进入这边的，同样的也加些的是，他那带罗的，也有你喜欢的是，以前我们在那罗巴矿上罗达他们说的，你小爷了孙，丁我爬孙的，你原来你罗达你，你的丁我，但原来你里面不的，但你这你年纪三十块看上去生命大，年的是年的，你罗要帮忙打不那些，下月的是的，年的。我都是嘞，他先光学本耐心个，你加不耐心，那么他社区管起的些基地的有的是，他第一年不做不的，他城里子那么多，你农家说的个管不得呢，你第五进五七嘛，那做些没得，你做完的吃了比吧，他第吃了吧比较对吧，第一个五几年做第二的是，他人第满嘴巴开的话是，你看老了，你哪个个你不点吧，他第面个你不先点有的是，那老个果断都不需要你。Rabza shuna an tindi jiri shi asla.
0: Lesi lesi. Da kongli amjila jishye gyunba nangshin, da nying di na gyabu dian li shubu tan jabu yubji da, da nangshi loa di ina le, da yang di tago li yubi, da lumbu dabu tindi jiri shubal. Da manshi chebi nang na zu miigi lubu, da mala changmu loo kekan hajan chenpu jimbi ina le, di nang na le yang, yang na zu nying tan loa so dunzu ina, yang tiwe yang da nang zu zaji gi da mala dabu tindi jiri shubal. Lesi lesi. Da nang zu namgyu soya nang shubi ina, ले दयान लोने छुया दिता इंजेसि के मंगु छेजे दिछि वरबल तिनजे इंदु जबा त्रि एमजिला लिया कंट्री छुया दिना लोने दि नाया की त चुजिन दि जो खंजे जिल्या थुयनाल
1: असे ततिया त पेजु सोर ब कुरान गन मेनि जेसोन अन तिनजे जिलेशा लोने नाय जुनजे कसना मन दु दुसना मन दु तिनजे छि त दे जुदि लोन द ट्रिबा पेगे ता छुसर दिसिबले अन मिदावरेस त दे ठोसु छुबले अत गना जु के के दि अन कसे रुवाचे अनि नराजु कसे जुमेरिचे दिदेरि माबसेबेदा मारे ने खाजायबेदामेदा छाछेमो दबजेइन छाछेमो अनि नरा थुवा माबयेबसनामदु ता थुवा टेम्पसनामदु ता थादु माबयेबे दिदेरि ताडा कोलु पाक्दोगि किला थुयुमबदेबा देमानजे अनि छाम्बा देबुदा नि गुरिंबु जुमन्दबा छामनेगि जु दिछावादिगेदि अनि दाम्बा छावा थुदोदु जुमन्दबा छावा थुदोदु अनि नराजु दुमन्दबा सुमन्दबा ता दिनदेगि 제소는 아니기 뒤에 제일 어떤 줄 알면 다 따고 지내는 특유다 유린 때문에 제라 아니 로네다 중국 요아레 살로네 지 중국에서 라지다 드르지레샤
0: 레슬레

सेम कोने शुरू है यंग द रिरे जी सिन सिन बदीनी कावे जोंकी लुजु छेमो रिजे ग्याजु छुदीन